जुआ सुचल से सपो आई बारी है जिसके जी प्राण है क्यूसा है मन सारी है अपना हती अपना आपे ही।

जह तह प्रसुकरण धान जगमग तेज पूर्ण प्रताप अमर जमीन जबजा सातो का सातो पतार बितरियो दृष्ट जय करम जा।

पावड़ी वडियोंडा पारती रामर्त बारंग परंगनी जापन करते बा जी आंदर जीओ सबकी जान ला सब इस तेरा वस तेरा कर पला तेरा कर अनंत बधाई दुध कर माण महत्ता तेज अपने आप जल सर्व कला भरपूर दिस जित कता नानक दास दास तुदे आगे बिनवत्ता श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महात दिवस रात दुए दाई दाया के लै सकल जगत चिंग्या।

फतेह गुरु पंथ खालसे दी दिनों दिन चढ़दी कला रखनी सच्चे पातशाह जी महाराज।

दी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल और रामा कमल कुसम चंपक के नामा गौरा औ कानरा कल्याणा अष्टपुत्र।

जय जय करुणा श्री आदि द्वार को छाट के दयो द्वार द्वार बाहे के किला जय सोवन दास द्वार द्वार राज करे का काल सा की रहे कोए पार होए सब लेंगे बचे शरण जो होए दोहरा उड़गी स्वाम लेश की कर बुढ़ा पासा डंका बाजे ते कान हे कलंक अवतार चतर चक्र वर्ती चतर चक्र होते सुयाम पौष वंश रविदास रुक्ते जो काल इन प्रणासी दयालन स्वरूप सदांग संगे अपंगंग विभूत है देख ते गुप्त निर्मित दुर्याप्त नान गुरु गोविंद सिंह जी काल भी सहाय दरबार में जो दरबार आ सचन सरण कारा श्री कृत नेत्र बारा